0: मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज यानी 28 जून 2026 रविवार, युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मई 2025 में हुआ था, में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सरकार ने आधिकारिक रूप से जारी किए हैं। यह पहली बार है जब इस ऑपरेशन में हुए बलिदान की औपचारिक पुष्टि की गई है। नामों का नेशनल वॉर मेमोरियल की रोल ऑफ ऑनर सूची में शामिल किया जाना है। यह कदम सैन्य पारदर्शिता और शहीदों के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में सभी 8 आरोपी गिरफ्तार। दान राशि के गबन और धोखाधड़ी के आरोपों वाले मामले में FIR में नामित सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के करीबी लोग भी शामिल हैं, जिससे ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारी चंपत राय पर दबाव बढ़ गया है। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से चर्चा में है। विशेष मतदाता सूची संशोधन में 6 करोड़ नाम हटाए गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा जारी है। अब तक लगभग 6 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और पारदर्शिता की कमी होने के आरोप लगाए हैं। यह प्रक्रिया 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। भारतीय LNG जहाज दिशा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया। इराक अमेरिका युद्ध विराम के बाद पहली बार किसी देश का LNG जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा और वो भारत का LNG करियर दिशा था। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग है। भारत दुनिया के सबसे बड़े LNG आयातकों में से है, इसलिए यह घटना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। मणिपुर में फिर तनाव, भीड़ ने अस्पताल को घेरा। मणिपुर में जातीय तनाव एक बार फिर बढ़ गया है जब इम्फाल के रिम्स अस्पताल में घायल कुकी युवकों के इलाज को लेकर भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया। यह घटना बताती है कि राज्य में शांति प्रक्रिया अभी भी नाजुक है और हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ रेड अलर्ट, IMD की चेतावनी। दिल्ली में इस सप्ताह 92 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाएं चली, जिसके बाद IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गंभीर तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी, जिससे शहर में पेड़ गिरने, ट्रैफिक बाधित होने और बिजली कटौती जैसी समस्याएं सामने आई। आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरें। ऑस्ट्रेलिया में एम्बुलेंस रैंपिंग संकट गंभीर, AMA की चेतावनी। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन AMA ने चेतावनी दी है कि देश में एम्बुलेंस रैंपिंग यानी मरीजों को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही लंबे समय तक इंतजार करना गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कई राज्यों में मरीजों को घंटों तक स्ट्रेचर पर ही रखा जा रहा है, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव है। यह मुद्दा भारतीय समुदाय में भी चर्चा में रहा क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। NSW सरकार ने बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट सहायता पर $20.4 मिलियन की घोषणा की। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट सपोर्ट सेवाओं को मजबूत करने के लिए $20.4 मिलियन की नई योजना शुरू की है। इससे सुनने में कठिनाई होने वाले बच्चों को बेहतर तकनीक, थेरेपी और फॉलो अप सेवाएं मिलेगी। भारतीय मीडिया में इस खबर को महत्वपूर्ण दिया गया है। भारतीय मूल के कई परिवार इस सेवा का लाभ उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेड पेरेंटल लीव 1 जुलाई से 26 सप्ताह का होने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से पेड पेरेंटल लीव को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाएगा। यह देश के परिवार हितैषी कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय मीडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता दी है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी युवा परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पॉलिन हैंसन ने SBS को बंद करने की मांग दोहराई। बहुत सांस्कृतिक समुदायों में चिंता। वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन ने फिर से मांग की है कि SBS स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद कर दिया जाए या उसकी फंडिंग कम की जाए। उन्होंने दावा किया कि SBS बहु सांस्कृतिकता को बढ़ावा देने में असफल है। इस बयान से भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और अन्य प्रवासी समुदायों में चिंता बढ़ी है, क्योंकि SBS उनकी भाषाओं में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करता है। लिन फॉक्स ने मेलबर्न में इलेक्ट्रिक ट्रकों को सेवा में उतारा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी लिन फॉक्स ने मेलबर्न के पश्चिमी हिस्से में इलेक्ट्रिक ट्रकों की को सेवा में उतारा है। यह कदम सरकार के समर्थन में उठाया गया है और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा परिवहन क्षेत्र को हरित बनाना है। भारतीय मीडिया में यह खबर इसलिए आई क्योंकि भारत भी लॉजिस्टिक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन पर तेजी से काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेशी धमकी इंटिमिडेशन की शिकायतें दर्ज कराने की अपील की। सरकार ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या समुदाय को विदेशी सरकारों द्वारा धमकाया, मॉनिटर किया या चुप कराने की कोशिश की जा रही है तो वह तुरंत उसको रिपोर्ट करें। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रवासी समुदायों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भारतीय समुदाय ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। आइए अब जानते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की। अमेरिका ने कड़ा दबाव दिया। ईरान ने इजराइल के लेबनान में जारी हमलों से नाराज होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। यह वही मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश का दावा स्वीकार नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता फिर शुरू होने की संभावना। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में शुरू होने की संभावना जताई गई। यह वार्ता क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस में भीषण हीट वेव, रेड अलर्ट जारी। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने के बाद सरकार ने देश के एक तिहाई हिस्से में रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस दौरान शराब सेवन और प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। यह यूरोप में इस साल की सबसे खतरनाक हीट वेव मानी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण। अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमले में ईरान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान के बहुशहर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। यह घटना पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हालांकि खामेनेई की मृत्यु काफी पहले हो गई है, बट इस अंतिम संस्कार को अब किया जा रहा है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया और फिर चीन गए। बीजिंग में व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं मुख्य एजेंडा रहेंगी। यह यात्रा दक्षिण एशिया की कूटनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया है। इनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं और यह ऑपरेशन वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। अभी अपना रंजन रमन जी से समाचार सुने। आशा है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि हुई होगी। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान भी हैं और हम दुर्गा शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। इस सब के बारे में आपको बताएंगे कि हम किस दुर्गा शक्ति की बात कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए यतीन्द्र जी आएंगे, उनसे भी बात होगी। और हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं और काफ़ी अच्छी और ज्ञानवर्धक हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान काफ़ी गहरा है। अच्छा, इसके अलावा हम सोशल मीडिया डे 30 जून को है, तो सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। शैलजा जी,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमने रोमांटिक गीत चुने हैं 1970s के,
2: आपकी पसंद के,
1: आपकी पसंद के, बिल्कुल बिल्कुल आपको पसंद आएगा। और ये है कि इसके अलावा हम और भी तरह तरह की बात करेंगे हमारे,
2: और प्राइस,
1: अच्छा हाँ प्राइस,
2: टिकेट,
1: टिकट भी
2: तो
1: है।
2: बहुत बड़ी, इसीलिए तो कितने हमारे श्रोता हैं इसीलिए के कान लगाए हुए हैं।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाता रहे मेरा दिल इस नाम से केदारनाथ जी ने अपना कार्यक्रम रखा है 4 जुलाई को, उसके 2 टिकट हम देने जा रहे हैं, और हम देंगे उस सज्जन या सज्जनी को,
2: सज्जनी को
1: या जिस मतलब आप समझ गए होंगे,
2: आप
1: जो कि सबसे अच्छा कमेंट लिखेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सुनते रहिए और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते रहिए। अगर आप चाहें तो हमें वैसे फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे जो डिस्कशन हो उसमें कंट्रीब्यूट करें। और तो शैलजा जी
2: आप भजन सुनाइए पहले, तो
1: भजन से पहले हम तो आज का विचार सुनाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आज का विचार भी रंजना रमन जी ने भेजा है, बहुत ही सुंदर विचार है।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रंजना रमन आपके लिए लेकर आई हूँ आज का प्रेरणादायक विचार। सफलता की कुंजी दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं तभी असली प्रगति शुरू होती है। हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने खुद को अपने कल से कैसे बेहतर बनाया है। धन्यवाद
2: प्रदीप जी।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो दोस्तों, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, 2-3 दिन बचे हैं। तो हमने इसीलिए अपने एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है टैक्स प्लानिंग के लिए। तो यतीन्द्र गुप्ता जी का यही काम है, इनकी रोजी रोटी यही है। और यतीन्द्र जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद प्रदीप जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ये जो है ना, इसी समय हम लोग पूछ ज़्यादा होती है।
1: नहीं नहीं, आपकी पूछ तो काफ़ी बढ़ा दी गई है
2: जी, आई नो,
1: क्योंकि GST का चक्कर ऐसा चलाया गया है कि अकाउंटेंट्स की पूछ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।
2: वैसे तो क्या है कि सारे लोग इस गवर्नमेंट से गुस्सा हैं, एक ही लोग खुश हैं जिनका नाम है अकाउंटेंट।
3: अकाउंटेंट इस चीज़ से खुश हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में धुरंधर एक और आ गए हैं यतीन्द्र जी, और वो खुद अकाउंटेंट हैं, इसलिए कह रहे हैं अकाउंटेंट तो बहुत खुश हैं।
2: कि जितनी ये वाकई में इतना कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था इस तरीके से कोई गवर्नमेंट बिहेव करेगी, लेकिन करा। उसमें ग्रीन का शामिल होना, तो जो अभी जो चेंजेज हो रहे हैं वो 2027 से शुरू होंगे।
3: अच्छा,
2: तो ये 26 का जो है वो पुराना वाला है। तो फिर भी अभी 2 दिन हैं और लोग काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दर्पण रेडियो की कोशिश हमेशा यही रहती है कि कैसे हम अपने श्रोताओं को हेल्प करें।
1: अच्छा, ये बताइए फ़ायदा कैसे उठाएँ।
3: बिल्कुल
2: जी। तो एक तो सुपर फंड में आप $30,000 तक डाल सकते हो। तो जैसे किसी की तनख्वाह है मान लो 1 लाख, तो उसको 12,000 मिला, तो 18,000 वो अपनी जेब से डाल सकता है और उसको क्लेम कर सकता है। तो सुपर फंड में 15% टैक्स देना होगा उसको, यहाँ पे समझो वो 30% करता है, तो 15% ऑलरेडी बच गए।
1: ठीक है,
2: तो 18,000 पे 15%,
1: तो ये 2 दिन में कर सकते हैं वो लोग।
2: 2 दिन में कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर करना है, अगर आपका SMS ऐप नहीं है तो अपना जो भी, जैसे मान लो AMP है आपका, तो उसको लिखना होगा कि यू हैव इंटेंशन टू क्लेम। दिस इज़ ए कंसेशनल कंट्रीब्यूशन, आप लिख लो। उनको इंटेंशन बोलना होता है कि आपने ये पैसा डाला है टू क्लेम एज ए डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यू कैन मिस इट। आपने जमा भी कर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं होगा।
1: यतीन्द्र जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है,
2: नीचे हो रही है। अभी कैसी है?
1: और पास आ जाइए।
2: अभी ठीक है,
1: अब बहुत बढ़ गया।
3: तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करना होगा, इसका मतलब कि 2 दिन बाद ये टैक्सेशन जो है 15% से ज्यादा हो जाएगा क्या?
2: नहीं, 2 दिन फिर वो बेकार हो गया आपके लिए। 30 जून इज अ क्लिक। तो अगर आपको चाहिए तो आज ही आप डाल दो, भले ही आज संडे है, और फिर वो इमिडिएटली कल सवेरे आप उसको इंटेंशन डाल दो कि भाई ये मेरा इंटेंशन है टू क्लेम दिस मनी एज ए डिडक्शन, एज ए कंसेशन।
1: लेकिन ये ध्यान रहे कि 30,000 से अगर ज़्यादा हो गया तो आपका जो टैक्स थोड़ा सा उस पर जो एक्सेस होगा ज़्यादा होगा।
2: तो इसमें एक्चुअली एक और होता है, मान लो किसी गलती हो जाती है। चलो, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि समझो ये गलती हो जाती है, आपने 30,000, आपने सोचा था 12,000 होगा लेकिन आपका ज़्यादा था उसमें, और समाओ आपने $10,000 ज़्यादा डाल दिया, तो वो 10,000 को आप नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन तरीके से उसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप, तो नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन क्या होता है शैलजा जी? कि जो आफ्टर टैक्स आपकी मनी होती है उसमें से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सुपर उसमें 15% नहीं पे करते हैं, और इस तरीके से हो जाता,
1: क्योंकि वो टेक्स्ट होता है ऑलरेडी
2: टेक्स्ट होता है।
1: अच्छा, उसमें एक वो भी रूल है कि 3 इयर्स वाला है कि
2: हाँ, अगर 3,60,000 आप डाल सकते हो, अगर आपको मान लो समझो अभी ये लोन बंद कर रहे हैं SMSF में ना, तो समझो आपने एक करोड़ प्रॉपर्टी लेनी है और आपने तो 3,60,000 अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो 7,20,000 आप डाल सकते हो। अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1,20,000 अभी डालिए और 1 जुलाई को फिर आप तब तक और बढ़ गया एक्चुअली 3,60,000 तो आप लगभग 9,60,000 डाल सकते हो ऑलमोस्ट अभी, क्योंकि लिमिट भी बढ़ गई है अगले साल से।
1: जतिंदर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो मूंगफली
3: मूंगफली वाला जो है एक निकाला तराजू में एक रखा
1: कि 3,60,000 आप ले लीजिए, फिर 7,00,000 7,00,000 ले लीजिए, मतलब ये है रुपए की बात तो नहीं कर रहे ना, डॉलर की बात कर रहे हैं।
2: सॉरी जो देखिए ऐसे है कि हर आदमी की सरकमस्टेंस अलग होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: अगर आप इसकी प्लानिंग की तरीके से, इसका मैं थोड़ा सा चुन रहा, आपने इसको बोला है
1: अकाउंटेंट की बात दूसरी होती है वैसे।
2: नहीं नहीं मैं ऐसे प्रदीप जी बोलता हूँ कि समझो कि 1 मिलियन आपके पास में, 1 मिलियन आपके सुपर फंड के पास में, दोनों का टैक्सेशन में बहुत फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: इस कंट्री में अगर आपने टैक्स को लीगली बचा लिया यू आर लाफिंग ऑल द वे, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास में क्लाइंट आते हैं, कभी कभी मुझे दुख होता है कि उन्होंने प्रॉपरली एडवाइस नहीं ली, दे आर मिलियंस ऑफ डॉलर बिहाइंड फॉर नथिंग। गवर्नमेंट आपको घर में एडवाइस तो नहीं करने आएगी।
1: नहीं बिल्कुल ठीक है, और ये है कि मुझे लगता है इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का इस तरह से नुकसान हुआ है उनके ऑलरेडी पैसे काफ़ी हैं उनके पास
2: आप
1: है ना।
2: हाँ, अगर आपके आपके दिल में ये है कि भाई आशीष के उसको आप मेहनत करिए, आप इकट्ठा करिए, आशीष वालों को भी देना है, NDIS वालों को भी देना है, सेंट्रल लिंक वालों को भी देना है, तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए।
1: हाँ नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। खैर हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे ज़्यादा, लेकिन ये है कि और बताइए कैसे।
2: एक तो क्या है कि जो मोटर कार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब एक चीज़ कई लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो वो अलाउ नहीं होता है। लेकिन आजकल आपको मालूम है कि कई लोगों को कई जगह जाना होता है ऑन द वे, तो वो आप पोर्शन नोट कर लो, 88 सेंट पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलता है, तो अप टू 5,000 किलोमीटर आप क्लेम कर सकते हो। तो आप करीब $4,400 ये बनता है कि अगर आपने प्रॉपरली अपने लॉग बुक मेथड बोलते हैं उसको, आप उसको लिख लो, तो 88 सेंट पर किलोमीटर के हिसाब से उसका होता है, तो वो भी एक अच्छी है। जैसे डॉक्टर हैं, आपने सर्जरी में गए, यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर ऐसे करे, डॉक्टरों को तो खैर बहुत

0: पर सॉरी 70 सेंट पर आवर के हिसाब से होता है आपको उसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, इंटरनेट का खर्चा हुआ,
1: हाँ।
0: फ़ोन का खर्चा हुआ, स्टेशनरी कंज्यूमेबल आपने चाय कॉफ़ी पी घर में, तो
1: हाँ।
0: सबका जो उन्होंने एक गवर्नमेंट ने बनाया है पैसा है उसका 70 सेंट पर आवर के हिसाब से होता है। तो उसको आपको अगेन एक लॉग बुक बनानी होती है कि कितने दिन आपने कितने घंटे काम करा उसका बनाइए, फिर उसके हिसाब से आपको क्लेम।
2: आजकल तो घर से काफ़ी काम हो रहा है।
1: हाँ।
0: जी नहीं नहीं काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा हाई एंड का टिप है इसमें, डोंट गेट टू ग्रीडी। अगर आप ऐसे बोलो कि मैं एक कमरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरा खर्चा है, ट्राई टू क्लेम मोर। जब आप उस घर को बेचोगे ना तो उस कमरे के बराबर का जो एरिया होगा ना, प्रोपोर्शनेट उसको बोलते हैं, उसको वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में नहीं आएगा।
2: अच्छा अच्छा,
0: मालूम से
2: कॉम्प्लिकेशंस। ये बड़े अच्छा आपने बताया कि इस तरह से ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको
0: बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत महंगा मतलब बहुत महंगा, समझो कि 20% है। आपने $1 million एक प्रॉफिट बनाया अपने घर पे, तो उसका 20% पे टैक्स देना पड़ जाएगा।
2: अच्छा, इस पर एक सवाल मेरा ये है
0: जी,
2: कि मान लीजिए आपने घर खरीदा 15 साल पहले
0: जी,
2: और आपकी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी,
0: ठीक है,
2: नहीं बढ़ी, लेकिन तो उसके इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी करंट वैल्यू काउंट की जाएगी या जो खरीदा था वो वैल्यू काउंट की जाएगी?
0: ओके, एक सिंपल एग्जांपल से बात कर लेते हैं,
2: ठीक है,
0: कि आज अगर आपने घर बेचा, $1 million का लिया था और समझो $2 million हो गया, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन,
2: ठीक,
0: तो $1 million आपका जो प्रॉफिट हुआ है, जो कैपिटल गेन उसको बोलते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं भरा जाता है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है।
2: लेकिन जो $1 million की प्रॉपर्टी थी, अगर उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो $1 million, $2 million ऑलरेडी हो गया।
0: मेरी बात तो सुनिए, अभी जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का ये हो गया,
2: ठीक,
0: अगर आपने ये रेंटल प्रॉपर्टी ली,
2: ओके,
0: तो $1 million का अब आपका इसमें कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, फिर उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है, $1 million अब 5 लाख रह गया, ठीक है, तो वो ये मान के चलते हैं, जैसे आपने इन्फ्लेशन बोला है, उन्होंने मान के चला कि भाई ये इन्फ्लेशन वगैरह,
2: आप तो रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं इस बारे में,
0: अभी नहीं हुए हैं, इस साल तक की मैं अभी बात कर रहा हूँ,
2: नहीं तो अगले साल की बात,
0: अगले साल में क्या होगा कि ये एक काम करते हैं, क्योंकि टॉपिक का मैं अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, पहले इस साल का हम हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि अगले साल का फिर हम बताते हैं,
2: ठीक है।
0: तो बस एक ही मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर आप एक प्रोपोर्शन क्लेम करना चाहते हो, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, आप अपने टैक्स अकाउंटेंट से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर पोर्शन आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में नहीं गिना जाएगा,
2: ठीक है,
0: एंड देन यू एंड अप पेइंग कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन योर ओन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बहुत ही डिसएडवांटेज होता है।
2: अच्छा, इसी बारे में मैंने एक और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में पता किया था, अगर आप उस घर में 2 साल तक नहीं रहते हैं और कोई नहीं रहते हैं, आप किराए पर भी नहीं उठाया आपने, तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं रहेगा, ये मैंने कहीं
0: नहीं, आप ढंग से पढ़ा करिए।
2: अच्छा,
0: अगर आपके पास में 2 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आ सकती है।
2: अच्छा,
0: अगर एक ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जैसे आपका कभी कभी ऐसे होता है, ट्रांसफर हो जाता है, आप मेलबर्न चले गए,
2: ठीक,
0: और यू डोंट वॉन्ट टू गेट योर हाउस रैक, आपने बंद किया, सामान पड़ा है, कहाँ लेके जाओगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उस केस में नहीं आपका चलेगा, बिकॉज आपका एक ही घर है। तो होप दिस इज वेरी क्लियर।
2: अच्छा चलिए, ठीक है,
0: और एक्चुअली एक और है, अगर आपको थोड़ा और टेक्निकली समझना, आपके पास में ऑप्शन होता है 6 महीने तक 2 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो सकते हैं, क्योंकि भी आप मूव करते हो एक दूसरा का, तो ये भी आप एडवांटेज ले सकते हो, फिर प्ले दिस गेम।
2: ओके,
0: तो होम ऑफिस का ये हो गया क्लियर कि कभी आप प्रोपोर्शनेट में नहीं जाइएगा, आप जितना ये यूज करा केवल उसी में रहिए
1: जी।
0: हाँ, रेंटल वाला अलग कैसा होता है, अगर रेंटल पे आपने घर लिया है उसका कोई कैपिटल गेन का चक्कर नहीं होता, तो

0: उसमें आप परसेंटेज कर सकते हैं।
1: अच्छा, उसका जवाब मुझे क्लियर नहीं हुआ।
0: हाँ बताइए
1: कि अगर मान लीजिए कि अगले साल के, अगले हाँ, साल के की बात करें या नहीं करें अभी?
0: अगले साल के रुक जाइए एक सेकंड।
1: अच्छा,
0: वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
1: ठीक है ठीक है,
0: मुझे मालूम था कि ये आप करोगे।
1: अच्छा ठीक है,
0: क्योंकि
1: चलिए।
0: अच्छा, अब लॉन्ड्री का भी खर्चा होता है, तो जो प्रोटेक्टिव क्लोथ जैसे होते हैं या जिसपे लोगो लगा होता है, यूनिफॉर्म जैसे होता है ना कि उसमें, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो $1 पर लोड होता है, केवल वही आपके कपड़े हैं, या 50 सेंट अगर मिक्स आपका लोड है, और $150 तक आपको कोई रसीद की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप $300 तक केवल क्लेम करते हो तो कोई रसीद का झंझट नहीं। बाद में मैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर दूँ, अगले साल से $1000 वाला शुरू हो रहा है, जिसने भी पढ़ा है ना कि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू हो गया है $1000 तक, तो वो अगले साल से June 27 से।
1: स्टैंडर्ड डिडक्शन से क्या मतलब आपका?
0: $1000 तक प्रदीप जी आप क्लेम कर सकते हो, $1000 तक।
1: किस किस के लिए? और ये बिना रिसीट के कर सकते हैं?
0: कोई रसीद की कुछ भी जरूरत नहीं।
1: अच्छा, तो $1000 तक आप बिना रिसीट के क्लेम कर सकते हैं।
0: जैसे अभी $300 है, आप अगले साल में $1000 वो हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: गुड न्यूज। अभी इतने लोग परेशान होते हैं छोटा छोटा रसीद करने, अभी $1000 कर दिया।
1: अच्छा ठीक है,
0: तो दिस इज वेरी गुड न्यूज।
1: $1000 पर आइटम
0: प्रदीप जी आपको मालूम नहीं है, आप कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हो, ये यहाँ पे जो है ना कुछ दो दो क्लास होते हैं, एक पैदा करता है एक ऊपर, तो जो जिसके लिए खर्चा करना है उसके लिए आपको पैदा करना पड़ेगा।
1: ठीक है,
0: तो आप एक खर्चा वर्चा ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो।
1: ठीक
0: है ना। अच्छा, तो अगर आपका $300 तक है तो आपको आप अकाउंटेंट आपका सिंपली डाल देगा, उसमें हो जाएगा।
1: ठीक है
0: ठीक है, तो अभी 50% कैपिटल गेन डिस्काउंट है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट अगर आपको कुछ बेचना है। जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक और चीज़ है कि कई लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियां होती हैं, तो आप अपना जो इंटरेस्ट है एडवांस में भी पे कर सकते हो।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो जैसे आपने इस साल का पे करते रहे करते रहे करते रहे, और जून में आके आप अगले साल का पे कर दो, तो इस साल आप उसका क्लेम कर सकते हो।
1: अच्छा अच्छा ठीक,
0: तो इट्स गुड टैक्स प्लानिंग। अगर आपको आपके पास में पैसा है, यू वांट टू टेक इट, क्योंकि डॉलर वैल्यू टुडे इज बेटर देन डॉलर वैल्यू टुमारो, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं वो आप प्लान कर सकते हो। तो जिनका फैमिली ट्रस्ट है, एक मैं लॉ बता रहा हूँ आपको, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 30 जून के पहले करना पड़ता है। अब आप कहेंगे अभी तक तो बुक्स ही नहीं बनी है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उसका एक तरीका होता है, आपका अकाउंटेंट बताएगा आपको कि इसका रेजिडुअल मेथड बोलते हैं, कि जहाँ पे तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट तो है ही, मान लो $500,000 का प्रॉफिट है, तो आपने कहा भाई पहला 1,00,000 जाएगा वाइफ को, दूसरा 1,00,000 जाएगा हस्बैंड को, और 3,00,000 जाएगा कंपनी को। इस तरीके से आप जो बैलेंसिंग फिगर उसको बोलते हैं रेजिडुअल, उसमें जाएगा।
1: अच्छा, तो यतीन्द्र जी एक सवाल आया, रिचा जी पूछते हैं कि डेडलाइन टू डिपॉजिट मनी टू सुपर वाज 26/6, इज इट टू लेट टू डिपॉजिट नाउ?
0: हाँ, आप सीधा डालिए उसको। और तो मैं ओके, दो किस्म के हैं, एम्प्लॉयर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सिस्टम के थ्रू जाता है, आप अपना वाला जो पैसा है सीधा डाल सकते हो।
1: तो अभी है 2 दिन?
0: हाँ, अभी 2 दिन, अगर आज ही आप डाल दो और कल सवेरे इंटीमेट करना बहुत जरूरी है कि दिस इज माय इंटेंशन टू क्लेम एज ए डिडक्शन।
1: अच्छा,
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: ठीक है
0: ठीक है,
1: आगे बताएं।
2: दूसरा प्रश्न है, डेडलाइन टू डिपॉजिट मनी टू सुपर वॉज 26/6, इज इट टू लेट टू डिपॉजिट?
0: हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बात आपकी सही है कि जो तो उसका क्लियरिंग हाउस होता है, तो वो क्लीनिंग हाउस में जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। लेकिन अगर आप तो उसका सीधे डाल रहे हो तो डाल सकते हो।
1: ठीक है
0: ठीक है ना। खासतौर पर SMS है जिनका, वो आप ही के अकाउंट है, एक मिनट में चला गया पैसा।
1: अच्छा, आगे
0: ठीक है। अब मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दूँ, जो बिजनेस के क्लाइंट हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक। आई नो कि आप अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो बेशक ब्रेक ले लो।
1: हम ऐसा करते हैं एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि हमारे जो मेहमान सामने बैठे हुए हैं हम उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शायद उनके पास भी कुछ सवाल हो आपके लिए, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं। और
0: ऐसा ना बोलो भाई, वरिष्ठ अभी यंग है।
1: नहीं, वरिष्ठ ये बात वरिष्ठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी इनकी जो पहुँच है बहुत गहराई तक है और बहुत ऊंचाई तक है।
0: हाँ,
1: ये हमारे
0: उम्र से कोई लेना देना
1: नहीं, उम्र से कोई नहीं, उम्र से कोई नहीं होता, यंग एट हार्ट तो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन तो संजय अग्निहोत्री जी हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं, ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि शायद ये जो पब्लिश करते हैं इससे रिलेटेड या इनकी और जो हॉबीज़ हैं उनसे रिलेटेड शायद कुछ पूछना चाहेंगे यतीन्द्र जी से, तो हमने सोचा कि आपको उनसे ही मिलवा देते हैं। तो संजय जी, वैसे तो आपको हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बुक्स के बारे में तो थोड़ी देर में बात करेंगे ही, लेकिन अभी यतीन्द्र जी हैं तो उनसे आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं जब भी आप।
2: लेकिन इतने गूढ़ विषय के विषय में बात करने से पहले एक कम से कम गीत तो सुना दीजिए।
3: एक मिनट, मैं जरा सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और प्रदीप जी आपको, यतीन्द्र जी आपको, और शैलजा जी दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और इसी के साथ मैं आगे हम काफ़ी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
1: शैलजा जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, शैलजा जी ने कहा कि एक गीत तो सुना दीजिए, तो मैंने सोचा यस, हम तो ऐसे बह गए थे यतीन्द्र जी के साथ पैसे के मामले
3: में, पैसे का मामला ही ऐसा
1: गीत तो भूल गए थे, लेकिन इसी
3: 99 का फेर ही ऐसा
1: है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाते हैं लता और मुकेश की आवाज में, फिल्म 1970 की है शोर, और बड़ा सुंदर गीत है, आपने बहुत बार सुना भी होगा,
0: बहुत अच्छा,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता है उसे सुनकर।
2: नितिन जी ने गेस कर दिया है,
1: उसमें जिंदगी का फलसफा भी है।

0: Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक.
2: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
3: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. तो यतीन्द्र जी, और इम्पॉर्टेंट बात,
4: हाँ, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है.
3: ठीक है, बताइए.
4: तो बिजनेस में क्या है कि अगर आप एक्सपेंसेस अभी ले आओ जून में और इनकम को जुलाई में ट्रांसफर कर लो. तो जैसे किसी को आपको इनवॉइस रेज करना है तो 1 जुलाई को कर लो. लेकिन अगर मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है अभी खरीद डालो. कंप्यूटर लेना है अभी ले लो. $20,000 तक इमीडिएट डिडक्शन मिलता है.
3: अच्छा,
4: अब जैसे कोई चीज़ आपको खरीदनी ही है तो क्यों 2 दिन बाद करो, तो आपको अभी फायदा मिल गया उसका.
3: अच्छा, ठीक है.
4: ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती होती है सुपर एम्प्लॉई का सुपर पे करना. अगर आपने अगले साल में पे करा तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता. बेकार हो गया. अब GST के रिकन्सिलेशन वगैरह होते हैं, वो आप अकाउंटेंट कर लेगा, उसका इतना बड़ा नहीं है. लेकिन जो $20,000 वाला है वो जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से. और जो एक एक ना बैड डेट किस्म की चीज़ होती है कि आपने किसी को करा उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको राइट अप करना होगा. उसको अगर आप राइट अप अगले साल में करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं. होता है बिजनेस में राइट अप भी होते हैं, तो वो आपको करना होगा. तो अगर कर लिया तो अच्छा है. कई चीज़ें आप एडवांस में पे कर सकते हो, इंश्योरेंस पे कर सकते हो, इंटरेस्ट इसमें भी आप मान लो कोई फिक्स लोन का वो भी पे कर सकते हो. कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराने हैं, मार्केटिंग के जो भी आप जो भी खर्चे आप इस साल में लेके आ सकते हो वो ले लो. अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो आप उनकी इनवॉइस ले लो. अगर आप एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो खर्चा इनकर्ड हो गया.
3: ठीक
4: ठीक है. और मोटर व्हीकल का तो जैसे कि लॉग बुक मेथड पे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. एक FBT का भी कैलकुलेशन होता है, वो भी अगर आप ध्यान में रखते हो आप अपने अकाउंटेंट से बात कर सकते हो कि FBT को कैसे मैनेज करा जाए. जो भी आपने अपने ऊपर खर्चा करा है तो वो कर सकते हैं. ट्रेडिंग स्टॉक एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखना, जो चीज़ें राइट अप खराब हो गई हैं तो उसको आप अपने ट्रेडिंग स्टॉक से निकाल सकते हो. ठीक है. ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी बोला ही था आपको. एक चीज़ याद रखिएगा, आपको 5 साल तक रिकॉर्ड रखने होते हैं, तो आपका कभी भी कॉल आ सकता है एंड यू हैव टू हैव रिकॉर्ड. अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है. तो चेकलिस्ट में वही बोलता हूँ कि इनकम एक्सपेंस को अपना रिव्यू कर लीजिए, पेरोल आपका रिकनसाइल होना चाहिए, सुपरनेशन का मैंने बोला है, एंड यही है. वैसे तो क्या है कि दिस इज
3: यतीन्द्र जी, आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, लेकिन बातें ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं पैसे के बारे में, है ना
4: जी. जी
3: तो ऐसा है कि हम आप फिर अगले प्रोग्राम में आपसे और बात होगी.
4: अगले वाले में हम ऐसे कर लेंगे प्रदीप जी, अगर आप हमें बुलाते हैं तो जो बजट में चेंजेज हुए हैं बहुत सीरियस हुए हैं उसमें अच्छा खासा आप मुझे समय दीजिएगा.
3: ठीक,
4: और फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं.
3: ठीक है, उसके बारे में बात होगी. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई,
4: मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है.
3: और आप हमारे साथ बने रहिए चाहे तो
4: जी, जी, जी.
3: और हालांकि आप बहुत बिजी आदमी हैं हमें पता है, आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने संजय जी पर. संजय जी से आपको मिला तो चुके ही हैं. संजय जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए और उसको मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए. ये बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत इनका ज्ञान बहुत गहरा है, हर बारे में, हर तरह के बारे में. आप जब इनके उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका ज्ञान कितना गहरा है. तो संजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है.
5: जी संजय जी, जरा आप अपना थोड़ा परिचय बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन यहाँ रहे हैं. मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे तो आप पूरे गुरु घंटाल लगते हैं. जाने आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी किताबों से जो लगता है वो तो बिल्कुल अलग लगता है. तो आप ये बताइए, आपका परिचय क्या है, असलियत क्या है?
6: ये असलियत ये है कि मैं जब आया था तो मैं आया हूँ रायबरेली से, रायबरेली का रहने वाला हूँ. और मैं जब आया था तो मैकेनिकल इंजीनियर था.
5: लगता नहीं आपकी किताबों से कि आप इंजीनियर हैं.
6: और आपने अगर M5 देखा है, M5 पे जो 3 लेन का 4 लेन कर देते हैं सुबह को 4 बजे के करीब, और उसके बाद 8 बजे फिर बदल देते हैं उसको 4 लेन का, फिर 3 लेन कर देते हैं, वो जो बीच में एक बैरियर है, उस बैरियर को मूव करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेलर है, आता है जो कि ट्रक पे पीछे लगा होता है जी. वो मेरा डिज़ाइन किया हुआ है.
5: अच्छा, वाह, तो, हाँ, तो बड़े गर्व की बात है. हाँ,
6: तो मैं ये RTF फ्लैट्स फ्लीट सर्विसेज में इंजीनियर था उस समय, तो वो मैंने डिज़ाइन किया. तो मैं वही था, और लेकिन मैं बचपन से लिखता हूँ, मेरी लिखने की आदत है. 5वें में पढ़ता था तब से लिखता हूँ. और पता नहीं मैंने यहाँ बताया है कि नहीं कि वो उस समय कादंबरी में एक वो छपता था, पिछले लास्ट के पन्ने में एक होता था कि नए लेखकों को वो मौका देते थे. तो
5: मुझे याद है.
6: तो हमने, हमको घर से उस समय, मैं बिजनेस मैन फैमिली से हूँ, मेरी फादर के अलावा बाकी सब लोग बिजनेस करते हैं. तो मुझे 25 पैसे उस ज़माने में मिलते थे शाम को. कि हर बच्चे को बिजनेस फैमिली देती हैं,
5: पॉकेट मनी,
6: पॉकेट मनी देती हैं. तो वो उन्हीं से मैंने अब टिकट विकेट खरीद लाए हम अपना, और हमने जो है 5 कविताएं लिख के, और वो जो है लिफाफे में डाल के, और टिकट लगा पता लिखा लिफाफा भी साथ में रिटर्न के लिए कि अगर नहीं मालूम. और मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी मेरी. तो वो मैंने किसी तरह से कोशिश की कि जितना अच्छा लिख सकूँ. वो लिख लिखा के, और उसमें आत्मकथ्य और ये, और वो आत्मकथ्य भी लिखना होता था. वो सब लिख के और वो भेजा, और वो साहब फटाफट वापस आ गया, क्योंकि इतनी गंदी राइटिंग कौन पढ़ेगा. तो वो तुरंत ही वापस आ गया था. वापस आया तो वो हमारे परिवार के हाथ लग गया. चाचा वाचा लोग थे और सब लोग थे, उनके हाथ लग गया. उन्होंने जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कह रहे देखो ये तो अभी पैदा हुए नहीं ठीक से. और ये देखो ये लेखक हो गए, कविताएं लिखते
5: हैं, कवि
6: हैं. हाँ,
3: सुनिए,
6: बड़ा मजाक उड़ा. हाँ,
3: आपने वहाँ तो आपकी कविता छपी नहीं, लेकिन आज हम आपको मौका देते हैं कि वो कविता अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो तो जरा सुनाइए.
6: जी, वो कविताएं तो मुझे बहुत कम याद है. वो है, एक तो छात्र पे थी कि आज का छात्र झिड़क का नहीं उसका कहेगा पात्र. वो तो भूल गया हूँ मैं, वो सब मैं बाद में दूसरी सुना दूंगा.
3: कितने बड़े थे जब आपने कविता लिखी?
6: मैं 5वीं में पढ़ता था, बताता
5: हूँ. इसका मतलब आप करीब 10 साल के होंगे.
3: 10 साल के होंगे.
6: हाँ, तो वो एकदम ठीक से याद नहीं है. हालांकि वो कविताएं बाद में यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैगजीन है गर्भनाल, उसमें छपी थी. और उसके बाद मुझे भोपाल बुलाया गया, वो भोपाल में विश्वरंग के प्रोग्राम में. अच्छा, उनके टिकट विकेट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे टिकट दिया था.
5: अच्छा, यानी अंकुर तो, आपका जम गया था तभी. 5 साल. हाँ, 9-10 साल की उम्र में आपका अंकुर जम गया.
6: जी बिल्कुल.
5: और बीज जो पौधा है वो अब हो रहा है.
6: हाँ, फिर उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग में गया तो वहां भी मैं लिखता था लोकल मैगजीन के लिए, और कॉलेज की मैगजीन में भी छपता था. तो वो सब होता रहा है. लेकिन उस बीच क्या हुआ कि इंजीनियरिंग में मेरा रिजल्ट थोड़ा खराब होने लगा था. कितना खराब क्यों मैं बता नहीं सकता हूँ. तो उसके बाद वो हमारे लाइब्रेरी.
3: आप एक बात बताइए कि खराब किस सब्जेक्ट में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है.
6: जी वही तो सबसे मुश्किल बात है, अंग्रेजी में.
3: हाँ नहीं, मुश्किल बात नहीं है. अक्सर होता ये है कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्हें बड़ी मुश्किल होती है पहले साल में. तो मुश्किल होती है. और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होती है, ह्यूमैनिटीज नाम से एक सब्जेक्ट होता है, पास करना होता है. तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर तो अच्छे हैं. आपने यहाँ डिजाइन करके आपने बताया. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप बताएं कि आपका इस सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे
6: जी, वो अंग्रेजी में बता अंग्रेजी में अच्छा मैं ही नहीं, जो मेरे क्लास में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला स्टूडेंट था वो उसके भी फर्स्ट टर्मिनल में जो है वो मुझसे भी एक नंबर कमाया था
5: तो अंग्रेजी में सब नीचे,
6: सब नीचे थे मामले। अच्छा, तो ये हाँ, होता है। तो
3: चलिए ऐसा है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप ने अभी जो लेटेस्ट आपकी बुक है कारसाज, मैंने सोचा कारसाज मैंने कभी सुना तो नहीं इस शब्द को, तो ये कारसाज कहाँ से आया? लेकिन जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मेरी समझ में आ गया कारसाज से क्या मतलब है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में।
6: देखिए कुछ आपने हर दफ्तर में देखा होगा, हर महकमे में, हर यहाँ तक कि प्राइवेट बिजनेस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ काम करते हैं, उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि उनको उसके बदले में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और या क्या हो रहा है, और वो इतने स्ट्रांग भी होते हैं कि आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। एक खास कम्युनिटी है जैसे कि इवन इंडिया में जो जो IAS लॉबी है उसमें भी कुछ करीब 15 या शायद 16 या 15 लोग हैं, मैंने गिनती की है, वो ऐसे हैं कि वो लगातार काम करते हैं और सारी सरकारें उनसे तिलमिलाती रहती हैं, उनका ट्रांसफर करती रहती हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती कभी कुछ, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि बचना कैसे है। तो वो जो कम्युनिटी है उनके लिए मैंने नाम दिया है कारसाज। कारसाज का मतलब होता है जो चुपचाप काम करता हो, भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, खुदा के लिए, गॉड के लिए भी इस्तेमाल होता है कारसाज। तो वो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जैसे कि आप याद करिए एक IPS थे अरुण कुमार, उन्होंने कितने कितने कमाल के काम किए, वो तलवार मर्डर केस वाले,
5: बिल्कुल, और क्या,
6: और लेकिन उनको कोई कुछ कभी बिगाड़ भी नहीं पाया, वो चुपचाप रिटायर हो गए और बिहाइंड द सीन चले गए, और अब आप मतलब इतने साइलेंटली काम करने वाले आदमी थे कि उन्होंने कभी सामने ही नहीं आए, और अभी भी आप उनसे बात करना चाहो तो ज्यादा बात नहीं करते।
5: देख लीजिए जो जुलाहे होते हैं कितनी खूबसूरत बनारसी साड़ियां बनाते हैं,
6: बिल्कुल,
5: लेकिन चुपचाप पीछे रहते हैं, कभी वो आगे नहीं आते,
6: आते नहीं आते।
5: तो ये बताइए संजय जी, आपने कितनी किताबें लिखी हैं? आप तो जीवन भर कविताएं और लेख लिखते रहे हैं, लेकिन आपने पुस्तकें कितनी प्रकाशित की हैं?
6: जी प्रकाशित तो 12 पुस्तकें हुई हैं मेरी,
5: 12 एक दर्जन,
6: हाँ 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि 7 उपन्यास हैं, एक व्यंग संग्रह है और एक कविताओं का संग्रह है और एक जो है वो कहानियों का है।
5: अच्छा,
6: तो इतनी किताबें हैं अभी।
5: मैंने आपकी किताब पढ़ी है कारसाज, तो मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूँगी कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्रभावित हुई थी, कि मैंने आपकी काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं।
6: जी आपने तो बहुत पढ़ी हैं,
5: सभी
6: ऑलमोस्ट सभी पढ़ी हैं,
5: सभी लगभग सभी पढ़ी हैं, लेकिन जो कारसाज है वो तो मैंने खूब तबीयत से पढ़ी है और मुझको बहुत ही अच्छी लगी वो किताब, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सामाजिक जागरूकता का एक और पठनीय उदाहरण है ये उपन्यास, और उपन्यास की तरह से मुझे ये लगा कि प्रशासनिक नियमों का, वो सेवाओं का इतना आपको ज्ञान है, वन विभाग का आपको इतना ज्ञान है, पेड़ को काटने की बारियों का आपका इतना ज्ञान है, वन विभाग अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की मनोवृत्ति का आपको, साइकोलॉजी जो है उसका आपको ज्ञान है, इन्हीं आप तो बिल्कुल ही हमें लगता है गुरु घंटाल हैं।
6: जी बहुत धन्यवाद।
5: गुप्तचरों की कार्य प्रणाली व क्षमता उनका आपको है पूरा ज्ञान।
6: मैं लेखक के रूप में अपना नाम बदल कर गुरु घंटाल ही कर लूं मैं सोच रहा हूं।
5: कानून में मुझे लगा आप शायद लॉयर होंगे, फिर ये नहीं मुझे लगा कि आप इंजीनियर, आपका माइंड जो है वो इंजीनियरिंग का है, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको ये ज्ञान कहाँ से इतना हुआ है?
6: देखिए लॉयर का जहाँ तक सवाल है, मेरे पिताजी लॉयर थे और वो घर में बातचीत इस तरह की करते रहते थे कि कभी जैसे ना मान लो मजाक किया, कोई किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया घर में, माँ ने या किसी भाई ने, तो बोलने लगते थे कि वो अंडर सेक्शन दिस एंड दिस तुमको जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो वो मजाक में ही होता था लेकिन वो इम्पैक्ट रखता है थोड़ा सा। तो
3: अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, एक गीत और सुन लेते हैं।
6: जरूर,
3: क्योंकि एक घंटे में हम एक ही गीत सुना पाए तो हमारे कुछ श्रोता लोग
5: बिल्कुल
3: कहेंगे कि आपने
5: नीरस
3: नीरस कर दिया, लेकिन ये है कि नीरस बात नहीं हो रही है, काम की बात हो रही है संजय जी से। तो 1970 में एक बहुत हिट फिल्म आई थी, नाम था बॉबी। बॉबी के पीछे जो लोग
6: दीवाने थे,
3: दीवाने थे, यंग लोग दीवाने हो गए थे। और पता नहीं कितनी बार उन्होंने वो फिल्म देखी थी। तो उसी फिल्म का एक गीत सुनाते हैं।
5: प्रदीप जी, आप अपनी दीवानगी की बात कर रहे हैं क्या कि जनरल दीवानगी की बात कर रहे हैं?
3: मैं भी
6: तो ये गाना लिखा हो गया, गाया किसने वैसे?
3: गाया आपको पता लग जाएगा।
6: जज yeah. yes. शैलन सिंह वाला है क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
6: मैं शायर तो नहीं?
3: बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे गीत में।
6: मैं शायर तो नहीं।
5: जब तक
3: संजय जी आप गाते अच्छा है, लेकिन हमें
6: आपने कहा गड़बड़ी हो रही तो मैंने कहा मैं शुरू कर देता हूँ।
3: किसी वजह से गीत नहीं चल पा रहा है तो हम
5: तो जब तक आप गाना
3: हम एक राजेश खन्ना गीत सुना देते हैं आप।
6: जी जरूर।
5: जब तक गाना आपका लग रहा है तब तक मैं आपसे ये कहना चाहूंगी
6: जी जरूर
5: कि मैं आपके इस उपन्यास कारसाज से तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपका ज्वलंत विषय लेखन शैली और सामाजिक विषमताओं को उजागर करने की कला आप में बहुत है। इसके पहले भी आपने जो कई सारे लिखे हैं उपन्यास, उन सब में भी लगता है कि सामाजिक जागरूकता के प्रति आप कितने अलर्ट हैं।
6: मेरा मुख्य विषय वही रहता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप, मुझे लगता है 12 किताबें लिखने के बाद में आप विश्व स्तर के लेखक बन रहे हैं।
6: जी बहुत शुक्रिया।
3: बिल्कुल बिल्कुल
6: बहुत शुक्रिया।
3: तो इसी के साथ शैलजा जी, किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग का।
5: अरे वाह वाह,
6: कटी पतंग क्या बात है।
5: ये तो 70